0: pas jam 12 waktunya Pesona Mandalika. Sampai di sini dulu untuk hari ini warga ya. Tumhe thank you, Mujem Mafkar DJ. Kalau ada salah kata dari Hana Saringgi, insyaallah esok masih bisa ketemu kembali. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin ya Allah. Dan Hana pamit dulu warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोकती? Oh my god, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है.
2: चाहा बुलबुल प्यार है, मऊ चांदी आला करिश्मा कपूर अच्छा, मऊ गंदा आला शाहरुख़ान अच्छा अच्छा.
1: और हिंदी कविता
2: डगर है
3: सोना सोना
2: मंडलिका.